हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत,

हते हे पतित पावन भगत वच्छल अंतरजामी करुणा निदान गुरु गरीबनवाज कलयुग के तारण हारे शब्द गुरु दसा ही पातशाहियां के आत्मिक स्वरूप सतगुरु जुगो जुग अटल सतगुरु तखत छतर चवर दे मालिक सतगुरु शब्दा अवतार सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे आप जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठ के सतसंगत दियां घड़ियां दा लाह प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो अमृतमई पावन गुरबाणी दे जाप आसा की वार गुरु की बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। हुण इस अस्थान की नित की मर्यादा अनुसार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सिंह जी की लड़ीवार अमृतमई पावन गुरबाणी की कथा विचार का समा होया है। आओ सारे संगत जी होर भी कुछ समा प्यार सत्कार सहित महाराज सिंह जी के चरणों में बैठ के जीवन दिया अमोलक घड़ियां नूं सफलियां बनाउण लई सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी का अमृतमई पावन पवित्र उपदेश सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। क्योंकि जीवन की सफलता लई सतगुरु जी का पावन उपदेश बहुत लाभदायक है हर एक जीव प्राणी मात्र दे लई। जेड़ा मन संसार के जंजालां दे विच हर समय फसिया रहिंदा है उन्हां जंजालां तो आजाद होने दे लई सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी का उपदेश जीवन दे विच लाभवंद है। जेड़ा मन बार बार संसार दी भटकणा विच पै के दर दर ते भटकदा रहिंदा है जिस जीव ने महाराज साहिब जी का परम उपदेश सरवण कर लिया उसका भटकदा होया मन भी महाराज जी के चरणों में जुड़न लग पैंदा है। जेड़ा मन संसार के अंदर विकारां दी तपश दे विच हर वेले तपदा सड़दा रहिंदा है जे कोई जीव श्रद्धा विश्वास रूप कन्ना दे नाल सतगुरु जी का पावन उपदेश सरवण कर लए सर संगत जी उसका मन तपता होया शांत हो जाता है। जिस जीव नू अकाल पुरख परमेश्वर का भय ने हिरदे विच रहिंदा है परमात्मा नू अपने तो बहुत दूर करके जानदा है जे किते भावना सहित हो के गुरु का उपदेश सरवण कर लए वो भी अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी नू सदा ही अपने हजूर हाजर नाजर बहुत नेड़े तो नेड़े जानन लग पैंदा है। सच्चे पातशाह सतगुरु जी का पावन गुरबाणी विच फरमान है पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। हे जीव अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी ने जो नेड़े देखना चाहता है तो सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी के उपदेश नूं सरवण करिया कर। ये बहुत वड्डी दात है जीवन के अंदर सतगुरु जी ने सानू सब नूं सुभाग बख्शिश किया है। संगत जी सुभागड़े समय नूं सफलियां बनाउण दा यतन करिए सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी के चरणों का ध्यान धारण करिए और गरीबनवाज सतगुरु जी के अमृत बाणी के विचार नाल जुड़िए। गरीबनवाज सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी के विचार की प्रारंभता तो पहला बहुत जरूरी है चित बिरति नूं एकागर करना। सरबत संगत असीस बख्शिश करो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी नूं सीस झुका के रसना तो प्यार अदब नाल उचारण करो। जी करो रसना पवित्र

बजावे दोहरा ऐसे जन प्रताप दे देवन बड़े प्रताप तीन लोग जय जय करे हरे नाम सुजाव दोहरा सकल द्वार को छाड़ गए देव द्वार द्वार पाएंगे कि लाज आज गोविंद दास द्वार दोहरा राज करेगा काल साखी रहे ना कोई द्वार द्वार होए सब है के बड़े सब जो होए दोहरा के सभा में बिजली के कटुड़ा भासार डंका बाजे रे देगा है कृत्य अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयं मां सुभंग सर्वदा संयुक्ते सकाल प्रणासी दयाल स्वरूप सदा न संगे अपहं प्रभुते एक को मत निरत भेद रंगी अवतार सचखंड के

0: जिनके मन वसे आवाजे शब्द गने रे
1: सच नाम मेरा आधार
0: सच नाम आधार मेरा जिन

सनाते हो गंडे या मंडे पर चंडे फरमाते। न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुपुते भविखे भवाने अचित्रे। नारायण न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं अभूतं अभेखं। न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदैवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं। न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजो नि अक्षया तद्वै अजोहं। न जन्मं न मरणं न वरणं न व्याधं न रोगं न शोकं न पै निर्विखादं। अशीतं अपीतं अकर्मं अकालं अखण्डं अपण्डं प्रचण्डं अपालं। न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न परमं न पायं। न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न परमं सदैवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे।

ना नेहं ना गेहं ना शोकं ना साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अतांकं ना जातं ना पातं ना मित्रं ना मंत्रे नमो एक रूप तंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मं ना परमं ना सर्मं ना साके ना बर्मं ना चर्मं ना कर्मं ना बाके ना सत्रं ना मित्रं ना पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे। कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के पेश के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पछर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के बृद लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं दो देह दोखं कहूं औखदि रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी छात की तामसी हो कहूं योग विद्या तरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतंग कहूं भूम की भुगत मैं परम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या तरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं से वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं कहूं योग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग रहर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं परम पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आर भी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पश्चवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देवबानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं सत्र तारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेश पाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत विद्या कहूं नागबानी कहूं गारुड़ गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पछरा मछरा हो कहूं वीर विद्या पूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला तरे छत्रधारी कहूं राज साजंग तिराजा तिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछय आद अद्वै विधाता ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग।

अनभूत तेज अनछिज गात करता सदीव हरता सनातासन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म। जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र प्रात नहीं मित्र मात, जय कर्म भर्म नहीं धर्म।

दयाल असवंग जय ठटियंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव अदेव परंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मकां जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न सोग सुखंग जय रोग न सोग न भोग भुयंग जय खेद न छे भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पतंग जय रचियंग छत्री छत्र छतंग जय

गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साहु है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गेह है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को

नाग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न यंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, न अजन्म है, अपेक है, न तात है, न मात है, अख्याल अखंड रूप है, अछेद है, अपेद है, न रंग है, न पूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अपंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न पंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, परमाथ है, न सीत है, न सोच है, न क्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र

अदोख है अदाग है अच्छा प्रताप पेखी है। न कर्म है न परम है न धर्म को प्रभाव है। न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाओ है। न छल है न छिद्र को स्वरूप है।

गजा तपी नरा तपी करंत हे सेव है सदा चितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त याद जी बड़े तपस्पति तपस्तपी बिसेखिया बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया अगाध आद देव की अनाद बाद मानिया न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्ने

सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्वते सर्वके अनकाम सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वके निजभाम सर्वभुक्ता सर्वजुगता सर्वकर्म प्रवीण सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वकर्म अधीन सर्व सिमरतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विशुभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन याद देव अखंड भूमिका जले थले मह जप जाप अमंड सृष्ट चार विचार जीते जानिए सब चार आदि देव अपार श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्वमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटि नृपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद पेव न पावई शिव रुद्र अमुख चार कोटिंद्र उपेंद्र व्यास।

दानवी प्रदंते जोग जयंते मनुज मदंते गूढ़ कथे कर्म प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजी जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन भो भरम विनाशन धर्म धुजी घुंगरू घमंकण सत्र चमंकण फणियर फुंकारण धर्म तुझी अष्टाट प्रहासन सृष्टि निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे शुद्ध

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथि कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथि किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंघारोहण बितल तली जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाश अनली संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तबे दुख दुख दहंती ज्वान जयंती आद अनाद अगाध अछि शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कन तपत प्रतापन जपत जीवी जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभि चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तच तिच सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधार

मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत। कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वैका लखाए। अनछिज तेजन

होता है। चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते ब्यासे प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जच कहियत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताहिते पार निरत है।

अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कै कै मानिया जंत्र हूना जात जागी बाप हूना मायता की पूर्ण प्रभागी सो छटा के अन्न मानिया तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह कह जानिया तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के

सुंदर स्वरूप है के पूपन को पूप है के रूप हूं को रूप है को मत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंत है गनीमन करिंदा है के तीज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को पोगता के वृद्धता की बासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरा

देवन को देव है निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है कि शुद्धता को सार है, ज्ञान को बचैया है ईमान को दिवैया है, जम जाल को कटैया है कि कामना को कर है, तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है कि स्त्री है नानर है, विश्व को पर्ण है कि आपदा को हरण है, कि सुख को कर्ण है कि तेज को प्रकाश है, पाइया न पार पारावार हूं को पार जाको की जित विचार सो विचार को निवास है, हिंगला हिमालय गावे हाबसी हलबी द्यावे पूर्वी ना पार पावे असत अनास है, देवन को देव महादेव हूं के देव ना है, निरंजन अपेवनाथ अद्वै अविनाश है, अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के पुजैया है मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है, तरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है, के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावद छाछ कैसी छतरा नेर छपागर कैसी छब कालिंद्री के कूल के, हंस निसी सिहारू हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी तहार चली सातो सिंध रूल के, पारा सी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद निके रही झूल के, चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोही अतहा, हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही अतहा, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोही अतहा, गंगा सब गंगधार बकान सी बलिंदाबाद कीरत तिहारी की उजी।

पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, दृग जीवै दृग जीवास। जिन हर जिन सतगुर संगत पाई, तिन धर्मस्तक लिखिया लखास।

किंचित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पथर मह जंत उपाए ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले।

जी तब तापह जपह बेनता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडे अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब

चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस हुन तीन कह जय भादौ सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयान।

चूक होए कब लेहो सुधार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कब बाच दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कह जग माहे। जो तह प्रभु को ध्याई है अंत स्वर्ग को जाहे। दोहरा हर हर जन दुई एक है बिचार किश नाहे। जलते उपज तरंग ज्यो जल ही बखै समाहे। दोहरा जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। दोहरा जी जे तुमरे ध्यान को नितड ध्यान है संत। अंत लेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत। दोहरा तिन बिदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय। सब सिखण को सुख दे जह तह।

तोहे त्याग कहाँ चित तामे धरो। अब रीज के देहो वह हम कहो जाहो बिनती कर जोर करो। जब आओ कि आओ धन दान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर बास नाना है प्रभु धर्म जद के चाय सवैया। धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे। देह अनत नानत रह जस नाव चढ़े भव सागर तारे। धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जिया।

सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छय सकै न कोई सम सत्रह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कू आख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो।

साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारे चाली मुक्ते सर्व शहीदो मुरीदो सचियारे प्यारे सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप आपे आने रास, तिसै अगे नानका खले कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सर्व समकाल से जी की अरदास श्री वाहिगुरु जी के पास, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊंची मत पद का राखा, आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख फते, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब, अमृत सर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारन जी, तपियाने जी, खडूर जी, गुरु की बावली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान, दर्शन दार मिले बोलो जी। थम जी, ननकाने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुकतसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरमंदर दिल्ली में शीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। बगौड़ साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगन जी, नानक जीरा जी, शिकार घाट जी, हीरा घाट जी, माता साहिब देवा जी, संगत साहिब जी, माल्टे कड़ी साहिब जी, बसमत नगर दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान, दर्शन दार मिले बोलो जी। सर्व समुखालसे जी को नगारे आ, निशान साहिबा संजगत, तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, श्री वाहिगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज, अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के अजुर अमृतमयी शब्द बाणी, कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास, अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना, बाणी सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुणदे सरबत लाहे बंधौण, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

महला पहला सच तेरे खंड सच ब्रह्मण सच तेरे लो सच आकार सच तेरे करने सर्व विचार सच तेरा अमर सच दीवान सच तेरा हुकुम सच फरमान सच तेरा करम सच निशान सच तू दाखिल करोड़ सच सतान सच सजो सची तेरी सिफ सची सारा सची तेरी कुदरत सच पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो का

विस्मादनाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद अग फिर जंग विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खड़े बड़ानी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध भगवानी विस्माद सुयोग विस्माद योग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद सत विस्माद साला विस्माद जुड़े विस्माद रा

पहला घड़िया सबे गोपिया पैर कन गोपाल गहने पण पणि बसंत चंद सर जाता सगली धरती माल धन।

महला पहला मुसलमान सरसरी प्रकट करे विचार बंदे से जे पहचबंदी वेखण को दीदार हिंदू सराई सरा दर्शन रूप तीर्थ ना हर चा पूजा करो आसवेकार जोगी सुनते आवन जे तेर काम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया का कर सत्यामन संतो को।

नानक जंत पाए के समाले समना जिन करते करना किया चिंता भी करनी था सो करता चिंता करे जिन पाया जाके ते सवारी सास ते

0: पड़पड़ कटी लदी है पड़पड़ भरी सात पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ लिए खा पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती आर जा पड़िए जेते सास नानक लेखे एक गाले हर हमें चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहुत ईत भव्या ते तो लव्या बहु भेख किया ते दुख दिया।